अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

नमस्कार। इस विशाल विश्व में जहां जहां मानव बसा है, वो किसी भी धर्म, पंथ या किसी भी भाषा का हो, इन सब का विश्वास है कि संपूर्ण सृष्टि में एक ऐसी महान शक्ति है जो पूरे विश्व को संचालित करती है। हमारे भारतवर्ष में सदियों से देवी देवताओं के मूर्ति को ईश्वर का प्रतीक मानकर उसकी पूजा उपासना करने की परंपरा चलती आ रही है। मंदिरों में और घर घर में पूजा अर्चना, जप तप, यज्ञ हवन और विविध प्रकार से अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

भूत या राम जी आके भला करेंगे। ओके लाते हियर ना तो गाँव दिख के ओ कौन खुदाई पर तेल खुदा कहीं ओ मेजिंगा जब तक आउट द फिल्म कॉकटेल फिल्म बार इन स्पेन शाहिद कपूर रश्मिका मंदाना एंड कृति सनो।

0: Live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: कोर्ट यार तोर जन्मदिन है तोर सालगिरह है अब खाए त्राव तोर विवाह होने वाले है तोर शादी होने वाले है या किसी का मुंड संस्कार है उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
1: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

आपने सुने हैं सुनवालो कॉफी चाय और आज का चिंता उजाला रेडियो के जरिए पेश किए गए हैं। मैं हूं लॉर्ड महावीर और हमारे साथ भी आज दिए हैं आनंद चंद्रिका सिंह खलुक खवास। इधर हम बोले थे कि हम पेश करबे या ना पेश करबे, मैं छोटा रूप में हम माती पेश करें माया। मैं आनंद भाई इन कॉफी चाय कभी छोटा नहीं होएगा कॉफी चाय प्रोग्राम।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलांग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटर कार में या जहां पर भी आप हैं।
1: उजाला सोना चिरैया चिरैया।

0: उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो उजाला रेडियो आपके साथ
1: चलती है क्या नौ से बारह
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

सुनवालों, कॉफी चाय और आज का चिंता उजाला रेडियो के जरिए पेश किए गए हैं। मैं हूं लॉर्ड महावीर और हमारे साथ भी आज दिए है आनंद चंद्रिका सिंह। हम बोले थे कि हम पेश करबे या ना पेश करबे, मैं छोटा रूप में हम आती पेश करें। माया मैं आनंद भाई इन कॉफी चाय कभी छोटा नहीं होगा कॉफी चाय प्रोग्राम।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।
1: महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास, ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास। और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। ये थे जनाब मुकेश साहब, जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और जिंदा हैं।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। होफ दौरब से परिवार ओरी कुंदन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हफ्ता बुध को 70 साल के आयु में ज़ेफ अंतख यार और श्रीमती मिली ओरी कुंदन का पति लड़कन सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के पिता हॉवर्ड वीरेन और राकेश के ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के नाना। होफ दौरब का रहने वाला श्रीमान सुंदर ओरी के मृत्यु निवास स्थान पर होफ दौरब में हो गई है। स्वर्गीय पिता श्री जगमोहन ओरी और स्वर्गीय माँ श्री किसुंदे रामाधीन के बेटा जो था। होफ दौरब से परिवार ओरी कुंदन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हफ्ता बुध को 70 साल के आयु में ज़ेफ अंतख यार और श्रीमती मिली ओरी कुंदन का पति लड़कन सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के पिता हॉवर्ड वीरेन और राकेश के ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के नाना। होफ दौरब का रहने वाला श्रीमान सुंदर ओरी के मृत्यु निवास स्थान पर होफ दौरब में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के शाम में 5 बजे किए जाएंगे। वेस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्ट दौरब में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग परिवार ओरी और परिवार कुंदन के दुख में शामिल है।

और यही से सुनने वालों शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। और भजन जो आप सुनेंगे तो ये पेश है हौफ दौरप के रहने वाले श्रीमती मिली ओरी कुंदन के तरफ से स्वर्गीय पति दरकन सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के तरफ से स्वर्गीय पिता हावर्ड वीरेन और राकेश के तरफ से स्वर्गीय ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के तरफ से स्वर्गीय नाना स्वर्गीय श्रीमान सुंदर ओरी के याद में 70 साल की आयु में बीते बुध इनकर मृत्यु हौफ दौरप में निवास स्थान पर जो हो गई है। तो इन्हीं के याद में अगला गीत प्रोग्राम में पेश है।

और गीत अभी आप प्रोग्राम में जो सुने तो ये पेश की गई है होफडॉर्फ से श्रीमती मिली ओरी कुंदन के तरफ से स्वर्गीय पति और लड़कन सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के तरफ से स्वर्गीय पिता हॉवर्ट वीरेन और राकेश के तरफ से स्वर्गीय ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली की तरफ से स्वर्गीय प्यारा नाना स्वर्गीय श्री सुंदर ओरी की याद में बीते बुध 70 साल की आयु में इनकर मृत्यु निवास स्थान पर होफडॉर्फ में हो गई है। तो इन्हीं की याद में और इनकर आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये भजन प्रोग्राम में पेश की गई है। और यहीं तक आप उजाला रेडियो पर सुने शोक प्रोग्राम यादें।

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर एक गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: ये है उजाला रेडियो रात और दिन सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे सिर्फ आपके लिए

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग शुरू करते हैं। हर एक सुनने वालों को आदाबर्श और नमस्कार। मैं निशा बोल रही हूँ। आप सभी सुनने वालों को प्रोग्राम सबरंग में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सदाबहार नगमे हमने चुने हैं आपको सुनवाने के लिए। प्रोग्राम आगाज करती हूँ ये दुआ से। जिंदगी जिंदगी जितनी भी मसरूफ हो, मगर कुछ लोगों से चाहत का ऐसा ताल्लुक होना है कि वो यादों और दुआओं से कभी दूर नहीं होते। खुदा पाक आपको हमेशा सलामत रखे। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा।

मोहम्मद रफी साहिब से आपने अभी ये मजहबी गायन सुना। एस एन त्रिपाठी की मौसिकी थी नगमात अख्तर रुमानी का। मेरी अर्ज सुनो बनवारी, पूरी कर दो मनोकामना।

आरडी बर्मन का सजाया संगीत और गुलशन बावरा का लिखा तर्ज में पेश था ये भजन। प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। शबे इंतजार की कश्मकश में ना पूछ कैसे शहर, शबे इंतजार की कश्मकश में ना पूछ कैसे सहर होती। कभी एक चराग जला दिया, कभी एक चराग बुझा दिया, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।

किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गजल भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में मौसिकी बप्पी लहरी की। पहले पहल तो मैं उसकी तलाश में था, अब वो तो मुझ में है और मैं खो गया हूँ। तुम भी पहले पहल, हम भी पहले पहल।

ना अंदाज में पेश थी ये गज़ल अलका याग्निक की आवाज़ में शायर जावेद अख्तर का कलाम और मौसिकार अनु मल्लिक की मौसिकी थी। तन्हाइयाँ तुम्हारा पता पूछती रहे, शब भर तुम्हारी याद ने सोने नहीं दिया, पत्ते कहीं खरके हवा आई सोचो कि हम

ये शाम की तन्हाइयां ऐसे में तेरा गम, फिल्मी गजल आपने अभी लता मंगेशकर से सुनी। शंकर जयकिशन की मौसिकी, शायर शैलेंद्र का कलाम था। फूल तो हर रंग के मिल जाएंगे तुम्हें, मगर हर रंग से खुशबू हमारी नहीं आएंगी। फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुड़ा लगता है।

मुमताज राशिद का कलाम और हरिहरन की आवाज में पेश थी ये गजल। अब हम आपके खिदमत में हल्के मीठी धुनों में नगमे सुनवाएंगे। पहला गीत पेश है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: लौट गया गम का जमाना, आई खुशी लहरा के। विश्वनाथ राम मूर्ति का संगीत और राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज था। इसी अंदाज में आइए सुने अगला गीत।
1: अरे वाह मालिक, तेरा

सदाबहार गीत आपने अभी मुकेश की आवाज में सुना। फिल्म नकली नवाब से मैंने ये गीत लिया है। संगीत देने वाले थे संगीतकार बाबुल और शायर कैफी अजमी का लिखा तर्ज था। अब आई सुने मोहम्मद रफी साहब से ये नगमा।

जाने किस रूप की जादू भरी पर छाई हो, दिल छू लेने वाले नगमा पेश था। संगीत से सवारे थे शंकर जयकिशन। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल तो खोया है और तो कोई बात नहीं।

0: अरे यहाँ
1: बोलो कहाँ,
0: अरे यहाँ।
2: कमाल का दो गाना आपने अभी मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में सुना। अब लीजिए पेश है सुमन कल्याणपुर से अगला गीत।

फिल्म जहां प्यार मिले का गीत पेश था, आवाज थी सुमन कल्याणपुर की। मकामे मोहब्बत तुमने समझा ही नहीं, वरना वरना जहां तक तेरा साथ है वहीं तक जिंदगी मेरी। कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है, तुम समझा दो मन को।

दुनिया में आप सभी सुनने वालों को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस हिस्से का प्रोग्राम में अक्सर उन महान फनकारों के बारे में हम बयां करते हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया के ऐतिहासिक किताबों में अपना छाप छोड़ गए हैं, जिसे आज भी हम याद करते हैं और नए एक्टर्स भी उन्हें अपना आइडल मानते हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। एक ऐसे ही अदाकार था धर्मेंद्र, जिसके बारे में हम बयान करेंगे। धर्मेंद्र का आइडल था दिलीप कुमार। पिछले प्रोग्राम में आपने सुना था कि जब से धर्मेंद्र अपने चचा के साथ फिल्म शहीद देखा था, वो बड़ा होकर दिलीप कुमार जैसे एक्टर बनना चाहते थे। तब वो 12 साल का था और एक्टर बनने का ख्याल दिल से कभी निकला नहीं। सालों बाद उनका शादी हुआ, एक बेटा का बाप हो गया था, पर एक्टर बनने का सपना कायम रहा। इसी तरह धर्मेंद्र मुंबई में फिल्म फेयर टैलेंट में हिस्सा लिया। पिछले प्रोग्राम में ये भी बतलाई थी कि फिल्म फेयर टैलेंट में हिस्सा लेने के लिए बस में कई लड़के और लड़कियां भी थे, पर एक आदमी धर्म को गौर से देख रहा था और कहा, आप इतना हैंडसम हो, खूबसूरत हो, तुम देखना इसी फिल्मी दुनिया में तुम नाम कमाओगे, दुनिया आपकी कदम चूमेगा। सभी लड़के लड़कियां घबराए हुए थे। मुकाबला करने वालों के लिए मेकअप करने का जिम्मेदारी फरीदा का था। फरीदा दिलीप कुमार की बहन थी। धर्मेंद्र को जब पता चला कि फरीदा दिलीप कुमार की बहन है, तो खुशगवार यादें उनके दिल में फिर उभर आया। धर्मेंद्र ने फरीदा से अपने दिल की बात बतलाए। ये भी कहा, जब से उसने दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखा था, तब से ठान लिया था दिलीप कुमार जैसे एक्टर बनने को। अब हम एक गीत सुनवाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे।

0: फिल्म अनुपमा में से ये गीत लिया है। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र ने अदाकारी किए थे और ये गीत धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र को जब पता चला कि फरीदा जो उनका मेकअप किया, तो वो फरीदा से अपने दिल की बातें कह दिया कि उसने फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया एक दिन दिलीप कुमार जैसे एक्टर बनने को। फरीदा ने कहा, कल मैं आपको आपका आइडल दिलीप कुमार से तारुफ करवाएंगे। अगले ही दिन दिलीप कुमार से मिलने का ख्याल से वो घबराए हुए थे और फिर वो घड़ी आई, दिलीप कुमार उनके सामने खड़े थे। दिलीप कुमार को एहसास हुआ कि ये लड़का जो उनके सामने खड़े थे कांप रहा था। दो बजे थे, उनकी घबराहट और सर्दी का मौसम भी था। फरीदा अपने भाई दिलीप कुमार से धर्मेंद्र के बारे में बतला चुकी थी कि जब से वो फिल्म शहीद देखा था, वो बड़ा होकर उनके जैसे एक्टर बनना चाहते थे। और कहा था फरीदा कि 12 साल की उम्र से धर्म की ख्वाहिश था, तमन्ना था दिलीप कुमार से मिलने को, और अब उनके सामने खड़े थे तो वो सर्दी की वजह से कांप रहा था। दिलीप कुमार अपना जैकेट उतारकर धर्म को दिया पहनने को, और हाँ, वो जैकेट परेस में तैयार किया गया था। धर्मेंद्र ने कहा उनके लिए ये जैकेट अनमोल था। उसी दिन से धर्मेंद्र को दिलीप कुमार से ताल्लुकात थी। धर्मेंद्र ने कहा उसे अब अपने आइडल को इतना बीमार और कमज़ोर देखकर तकलीफ होती है, और कहा धर्मेंद्र ने कि दो महान शख्सियत जिसे वो पसंद करता था वो थे राज कपूर और देवनन। उनके लिए फिल्मी दुनिया में शोहरत हासिल करना कितना मुश्किल था। पहले हम आपको फिल्म बॉयफ्रेंड में से एक गीत सुनवाते हैं, जिस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार एक पुलिस इंस्पेक्टर का था।
1: आई ग

0: आएगो आएगो आएगो।
1: ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है। क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो
1: ये क्या हो गया।
2: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो।
3: फिल्म बॉयफ्रेंड का गीत पेश था। इस फिल्म में अहम किरदार में थे शमी कपूर और मधुबाला। इस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार पुलिस इंस्पेक्टर सुनील का था, पर उस दर्जा तक पहुंचने के लिए धर्मेंद्र को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पंजाब की पुत्तर खुली हवा में पले बड़े उसे अब मुंबई फरसोवा में एक छोटा सा कमरा मिला था रहने को। उसी दौर नेहती सैसख में मनोज कुमार से मुलाकात हुई। दोनों एक ही मकसद से मुंबई आए थे, एक्टर बनने। और अब 2 साल बीत गया था। जिन्होंने फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था मनोज कुमार भी था। दोनों आपस में वादा किया था फिल्मों में एक साथ काम करने को। और जब दोनों एक साथ मौका मिला फिल्म पिकनिक में काम करने को तो धर्मेंद्र बीमार पड़ गया था। प्रोड्यूसर धर्म को 2 हफ्ते दिया संभलने के लिए। 2 हफ्ते बाद प्रोड्यूसर जब धर्मेंद्र को देखा तो उसने कहा कि वो बहुत पतला हो गया और उनका किरदार आर्मी ऑफिसर का था, इसलिए फिल्म पिकनिक में सिर्फ मनोज कुमार को लिया गया। फिर प्रोड्यूसर रमेश सैगल फिल्म शोला और शबनम तैयार कर रहा था तो दोनों से वादा किया था फिल्म शोला और शबनम में अदाकारी करने को। पर जैसे होता आया है, जिसने फिल्म शोला और शबनम का फिनांसियर था उसने मनोज कुमार का किरदार अपना नेफ राजन को दिया। ये सुनकर मनोज कुमार तो मायूस हुआ था, पर धर्मेंद्र से कहा, तुम देखना एक दिन हम दोनों की मेहनत जरूर रंग लाएगा। और वो पल जल्द आया फिल्म शादी में, जो नेहती त्वीय शास्त्र में रिलीज हुआ। दोनों मनोज कुमार और धर्मेंद्र इस फिल्म में एक साथ काम किए थे। पर अब हम आपको शोला और शबनम का वो गीत सुनवाते हैं जो धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था।

फिल्म शोला और शबनम का गीत पेश था जो नेहुद्दीन ऐन शस्तक में पर्दे पर दिखाई गई थी। इस फिल्म में अहम रोल में थे धर्मेंद्र और खूबसूरत अदाकारा तारला मेहता। एक बार धर्म कतार में खड़े थे ऑडिशन देने के लिए, तो वहीं आसपास से देवानंद गुजर रहा था। धर्मेंद्र को देखकर उसने मुस्कुराया और देव ने धर्म से कहा, तुम मेहनत करते जाओ, एक दिन ऐसे ही लोग कतार में खड़े होंगे आपसे मिलने के लिए। धर्मेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि देवानंद खुद उनके पास आकर ये कहा था। फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट का मुकाबला जीतने वाला था, जी हाँ, धर्मेंद्र। और जिस बस में वो था उसी बस में कई लड़के और लड़कियां थे। उसी बस में एक साहेब धर्म से कहा था, तुम एक दिन शोहरत की बुलंदियों को छुएंगे। वो साहेब था हिदायतकार अर्जुन हिंगुरानी। वही डायरेक्टर ने धर्मेंद्र को लिया था फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में। इसी फिल्म में से आइए सुने ये डुएट जो धर्मेंद्र और कुमकुम पर फिल्माया गया है।

इस फिल्म के बाद हिदायतकार अर्जुन हिंगोरानी ने धर्म को दो फिल्मों में मौका दिया काम करने को, रमेश सैगल्स शोला और शबनम और बिमल रॉय का पेशकश बंदनी। इस फिल्म में थी उनके साथ अदाकारा नूटन। धर्मेंद्र अब दो चार फिल्मों में काम कर चुके थे पर वो अपने काम से खुश नहीं होते थे, अपनी ही फिल्म वो पूरा नहीं देखते। थिएटर से पौसों में धीरे से वो निकल जाते थे और मुस्कुराते अपने आप को कहते, वाह बेटा क्या काम कर दिया तूने, और ये भी कहते, मेरे काम पे मुझसे कभी वाह वाह नहीं निकली। चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती। आहिस्ता आहिस्ता धर्मेंद्र का नाम आवाम के जुबान पर था। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स धर्मेंद्र का काम से खुश थे क्योंकि उस जमाने में एक्टिंग सीखना का स्कूल नहीं था और धर्मेंद्र नेखतिन शस्तक से लेकर नेखतिन फैफ शस्तक के दरमियान 20 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में 12 सुपरहिट फिल्में थे और 3 फ्लॉप फिल्में। धर्मेंद्र ने कहा, अवाम मेरे फिल्में पसंद करते हैं, मुझे सराहते हैं, पर उसे खुद की फिल्म फूल और पत्थर पसंद था। ये फिल्म नेहती शस्तक में रिलीज हुआ था लेकिन उस जमाने की फिल्म शोले जैसे था। और कहा धर्मेंद्र, मैंने अपनी पहली कार खरीदी एक फियात, ये मेरा सपना था, और एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। एक महीना के लिए 180 रुपया किराया था। उस जमाने में 180 रुपया बड़ा रकम था। फिर धर्म फखर से अपने वालदैन बीवी प्रकाश बेटा अजय को मुंबई आने को कहा, पर उनकी बाबा को एतराज था, वो बेटा का काम से खुश नहीं था। माँ थी जो हमेशा बेटा का साथ दिया। बाबा अपने बेटा से इसलिए नाराज था क्योंकि वो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर प्रोफेसर बने। धर्म अपने बाबा से कहा, बाबा मैंने फिल्मों में प्रोफेसर का किरदार भी किया है, और हम पढ़े लिखे ना होते तो ऐसे किरदार नहीं कर सकता था। फिर बाबा जोर से आवाज दी, उल्लू के पट्टे, मेरा मतलब है असली प्रोफेसर। आखिर बाबा बेटा का मान रखा और अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। अब हम फिल्म फूल और पत्थर का वो गीत सुनवाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे।

इस फिल्म में अहम किरदार निभाए थे धर्मेंद्र और अदाकारा मीना कुमारी। फिल्म फूल और पत्थर के बाद धर्मेंद्र पीछे मुड़कर देखा नहीं, बुलंदियों के सीढ़ी चढ़ते गए। इस फिल्म का प्रोड्यूसर था ओपी रलहन, राजेंद्र कुमार का जीजा। राजेंद्र की बहन से शादी किया था। राजेंद्र ने इनकार कर दिया था ये कहकर कि ये किरदार के लिए धर्मेंद्र को लिया जाए, क्योंकि वो कई फिल्मों में काम कर रहा था। फूल और पत्थर के बाद दोनों एक साथ फिल्म आई मिलन की बेला में थे, जिस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार नेखतीफ किरदार था, फिर भी आवाम उसे इस किरदार में पसंद किया। एक बार फिर फिल्म फूल और पत्थर में से हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।

फिल्मी दुनिया सुना जिसमें हमने महान शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया। अगले हफ्ते के प्रोग्राम में धर्मेंद्र के बारे में हम बातें आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए आशा भोसले से पेश है ये गीत।

कारवां में से पेश था ये गीत आशा भोसले की आवाज में। इसी अंदाज में अगला गीत पेश है, गायिका है गीता दत्त।

उमंग भरा गीत पेश था, मदन मोहन का सजाया संगीत था, बोल राजेंद्र कृष्ण का। उनकी निगाहें कुछ ऐसा जादू किया कि लुट गए हम पहली मुलाकात में।

का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। वो नजर यूं उठी यूं झुकी यूं रुकी, हम तो बस थामे जिगर देखते रहे। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है, क्या कह रही है, कि दीवाना हो गया।

शायराना अंदाज में पेश था ये नगमा नगमात ऐश कंवल का मौसिकी लाला सर सत्तार का। अगला नगमा आइए सुने, स्वर है आशा भोसले की।

जी हाँ, कितना हसी है ये जहाँ, खूबसूरत अंदाज में ये गीत पेश था। ओपी नैयर संगीत से सवारे थे, बोल हसरत जयपुरी का। तेरे ख्याल में कुछ ऐसे गुम रहा बरसो, मैं अपने आप से भी मिल नहीं सका बरसो। तुम्हारे हाथ के दस्तक की आस में मोहसिन, मैं अपने घर से कहीं भी नहीं गए बरसों।

आई तो ख्याल आई। संगीत का रवि का संगीत रचना, गीत रचना साहिल लुधियानवी का, आवाज थी महेंद्र कपूर की। सुबह की किरण, सुबह की किरण आंखें मल मल कर देख रही है। नई सुबह, नया दिन, एक शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। सवेरे का सूरज तुम्हारे

सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कमाल का नगमा पेश था किशोर कुमार की आवाज में, नगमात इन दीवार का और मौसिकी ओपी नैयर की। अगला नगमा सुनाने को जा रही है मीठी स्वर में लता मंगेशकर।

मेरे मन का भावरा पंछी क्यों बार बार डोले, खूबसूरत अंदाज में पेश था ये गीत लता मंगेशकर की स्वर में। मंजिल की इंतहा तक कोई बताए ऐ फैज, चला जा रहा हूँ चला जा रहा हूँ और हसरतें बढ़ती जा रही है। ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है।

अमर गीत पेश था, आवाजें थी सुबीर सैन और लता मंगेशकर की। वो मेरे साथ बहुत दूर तक, वो मेरे साथ बहुत दूर तक सफर में रहा कि उसकी याद का साया, कि उसकी याद का साया मेरे नजर में रहा।

जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी में पेश था ये नगमा और नगमात राजा मेहदी अली खान का। अब आइए सुने मोहम्मद रफ़ी साहब से ये नगमा।

ही लेंगे बाजी हम तुम, प्यार का बंधन जन्म का बंधन टूटे ना, क्योंकि क्योंकि मुझ में एक ही तो खूबी है तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करना। खयाम की मौसिकी में पेश था ये नगमा। अब आइए सुने ए आर रहमान की मौसिकी में ये दो गाना।

दिल छू लेने वाले नगमा पेश था, आवाजें थी हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की। होती नहीं मोहब्बत चेहरे से, होती नहीं मोहब्बत चेहरे से, मोहब्बत मोहब्बत तो दिल से होती है, तो चेहरा खुद ब खुद अच्छा लगता है, कदर जिनके दिल में होती है।

खूबसूरत अंदाज में आपने अभी अनुराधा पौडवाल से ये नगमा सुना। कलाम था सिकंदर भारती का, मौसिकी बप्पी लहरी की। आज की रात भी मुमकिन है ना सो सकूं, इसलिए क्योंकि उनकी याद फिर आई है नींदों को उड़ाने वाली।

और यहीं पर हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग खत्म करते हैं। आप सभी सुनने वालों को प्रोग्राम सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नमस्कार। खादिमाती निशा।

0: जमुन में जोन जोन चीज आएगा तो जोन जोन गुण हम में आएगा लोहित
1: जमुन हुआ में आएगा दोस्तों वही खाती तो नाम सुन जाऊं धरवा
0: देख ले तो देख ले एक बार खुद फो इधर इन
1: आ हमारा नाम धरवा बाना तो शायद है तो स्नैप को निकल
0: तो नाम एक बिगरल बा बिगरल
1: बहुत बिगरल है गा
0: देखो खान में रेपुटेशन लोहित मसल हमें कॉफी ऑफ कुछ ना मिलल यहां तो बैठाई ले बातें हमें हां
1: यार सुना
0: एक तो गरम स्टूडियो में
1: हमें गरम एक हैबिट ओके इनदैट वारम एंड en ik zweet ook nu. Dus ik ga snel...
0: Ik koffie te lekker naar pijen. Je bent wat hoor.
1: Ik zo na.
0: Heb jij dat cola pijen?
1: Je laat ik aan jou kus naar pijen.
0: Koffie, chai en cola. Heb jij dat cola pijen?
1: Koffie, chai en cola.
0: Je hebt pech gehad, Lloyd. Ik ook koffie te lekker. Toch heb ik kei dat je samenzijt je joaier. Toch kan je aader keren dat koei toer gharen aanwege. Toch studio me hem aili. Toch kan je aader keren kan me.
1: Toch kan je hem respect keren.
0: Toch dwaar pe hem aili. Nee, niet respect, maar aader ja. Toch dwaar pe toch koei pahunc ge. Chai haat jolao wat aili. Maak niet. Dan moet toch kan je aader keren.
1: Ja, ja, ja.
0: जाने किस भेस में बाबा मिल जाए
1: ये मुत ऑलटाइम मेंसे गुड ओनफंगे है
0: हां फॉरऑल हम जो कोरिया दबाबे बेलवा
1: हां तो डायरेक्ट
0: तो देखिए हम बात ही द मुझे वही तो फन ए इस भेस में
1: हां
0: ये दिखाएगा आनंद माई भगवान हो सके
1: भगवान भी
0: ये भगवान के रूप में फरमाम तालबा हमारे जामुन
1: daarom houden die mensen van jou, hè, Arnand. Dat mooie toerje jij hebt. Ik was ergens op een show met hem, really. Ik was concert gaan. Nou, bolle we kijken concert gaan. Niet de reclame, hoe zeg je. Maar het was een hele mooie concert. Ik was bekende zanger keer gaan. En dan praat ik met mensen daar. En toen zeiden ze, ja, koffie, chai, zoenen.
0: जाने कितना आदमी हमसे माई ब्याह करे औरत मांगे हमसे ब्याह करे सॉरी ना आदमी अली अली दोर कॉफी एंड चाय
1: आई कॉफी एंड चाय अच्छा
0: अबे कॉफी एंड चाय एंड क्रिसस हो जाएगा अबे बचाए करेंगे
1: अबे क्रिसस हो जाएगा ना खुद हो प्रीतम प्यारे
0: हम लोग
1: हाँ
0: हम लोग शादी शुदा बाती
1: हाँ तू तू हाँ
0: हम आपन ऊपर बतियाई और लॉयड लॉयड अबे जाए सुपरमार्केट में जे मांगत हो जाने कौन सुपरमार्केट में थोड़ा सा इंतजार करिए यही हफ्ता में हम बताबे यही हफ्ता में हम बताबे कौन सुपरमार्केट जाए और कई बजे उ जाएगा वहां पे
1: हम जाला स्नेल बताबे अब हम जाला स्नेल एआई से पूछे सुन हमारे खास स्नेल स्नेल तो को वेबसाइट बना दे हम मांगिला एक औरत
0: और एक आदमी
1: या फॉर द फ्राउ या
0: एक के में बना दिए दोनों लोई मोई सर ये खुरचा सोई
1: प्रीतम प्यारे

सुनो वालों, कॉफी चाय और आज का चिंता उजाला रेडियो के जरिए पेश किए गए हैं। मैं हूं लॉर्ड महावीर और हमारे साथ भी आज दिए है आनंद चंद्रिका सिंह। इधर हम बोले थे कि हम पेश करबे या ना पेश करबे, मैं छोटा रूप में हम माती पेश करें। माया मैं आनंद भाई इन कॉफी चाय कभी छोटा नहीं होएगा। कॉफी चाय प्रोग्राम

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बात भी देखेंगे ना?
1: नहीं मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो घर चले।
1: नहीं मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।